0: Ergen ka doge tarili inni serge tege tohma do sri inni serge tevi nam do sa se do chi tol goni zire she gen chol ma ho ya ta san do doge din jaz gi inni serge chan do doge nim jaz gi inni serge ni do doge chon jaz gi inni serge yeg dong do doge gin jaz gi inni serge nam ka gon gi yin jaz gi inni serge tege tohma do sri inni serge ये देवी नाम दो सर से जो चिकित गो निजरी से गन छो मा हो या ता नाम दी तो मा खं ता दाज गी नि सर ग दो कुट ति छन छन कुरन दाज गी नि सर गन जो आ गा ओ सद ग दाज गी नि सर ग ए ता च नि छो आ दाज गी नि सर ग टो टो कम सर थो कुरन दाज गी नि सर ग र कुट थंग द सर नि ग दाज गी नि सर ग ए तिसरिन यरजिन थोरजिन दाजगी इन्नी सिरक दुगनि न्यामनि दाजिन दाजगी इन्नी सिरक दन थ्याक गिन बेना हन दाजगी इन्नी सिरक एन दे दावासक मा मेना दोरब जिशानि सिरक नि मा चालग मेना ताखि जिशानि सिरक ए तग थुमा दोसरि इन्नी सिरक तेविग नाम दोसा तेजो चिग तुगोनि जिरि शेगन छल मा हु या Tavikin kurundi, tizgishin yemur gibsin tay, tonsgin the shakin as a kushana tankan dazgan jani serga. Etam machin as a good ashatan dazga yini serga. Ya Tabo Kurmo ticket of Tlanda Yonkagas in our under the yini serga sagas in our kit the Kayoma keeping on it. Etiran and Amdo Sartendans and Shantans of meat from my Yapke de Muina. Ya Tabo Dava. Pimpin yiri shigni ma dongzi sirsi yiri chasli chatgi soksogu yiri chapsang riwa turturi yiri e cik seri jigya tonga dungi kankaru nda ma kyarsi zungi charsimu lanshiriki la jingi pangmi tukun da ma kungi jivi e nindatikin hui mu nanga tawi tunlu yi gani manzo da dizga yangrar gobji sanga kiamyi wilgin pituk dunga nangzga e nindar ngi tangma changa zigi kar omir sabjili khela sugi indi kangu ngomdang mar indi tatsu shingam chimbi tangmigdi tatsu ये हा आकी सोनम लुंग दोली माशमी सिला हुंग छंग ये व छाई तंबा गुंग तारे ये अगी रा थम क खर थोया शिओ शि क्या क्या गुंग गोदो जाया शिओ चन हमा के दार के गो जोई न हनी ज लुंग तारा वावी ये तान दोई गोम खा यंग ग नि मा छ जार तग तग गोर से ग नि मा छम जा गोन जम गा ग नि मा दे ये संग मे दिन कर मी कोन छ जोंग ये नम क्या रंग संग गो आ मी छ गिन द तमा चंग गो न्यू दंग ये खा स तग मंग तो आ सुगी ए चायुम रहक खुंगो चली तोंकारो खुगा अक गंग इन दि संदोर गंग गचना दियो सेरकि म दाचर सिमा दियो तोंकलन जाम बोदंग आचियो एन द थामदन संगर गिनस गियो निमदन हवार गिनस गियो नि सेरगा या ततनि शेमर गंगर उ थोगा मारकिर नि ओल हुंदाज गि गयो दि तंग दादर इनाच गियो यंग फदो यो ना थयो ए मंजरे आटोशा दियो थाना चंग चगरे कोरियो खुसम खंगा दोमदी गियो गिंदल नोरी उआ तमयोरा गोबज संगा चमयो ए की तंजम तंगे दसियो से खंसम हदिन छपा शमयो वाकरन जेले जन तगयो नम र सेरु खाकियो ए रामनी शीन जो तोरियो खंग ताकी गन थाजानी शायन गगे सेमजोयो नि सेरगा या थामग थेनी सनंग गदुरपग सियो सन छज गंगिन छंगो तरगेयो नंग काबज ग्वारी छंगो खाकियो ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས एन देन यर चेर गुआन चरी को खाटो नजगियो चागदो तवान जुगी यगा शिन नजगियो दंकर दमर तंगे तम से के नयो एवा कृष्ण आर सगे दे नजगियो नि सरगा या ता खातल निगी थमजिन सियो शमर वरम थमजिन सियो शमदे टोक्सम पंजिन सियो गोरिन दो जी गाय गेयो एन दिन दो सी गा पु छन नजग दग यो लोंच तेम दले यग नजग दग यो दि सी यगा जादो छिगचगा सागो नि सरगे की यगा टकग दरु कोंगो नि सरगे ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: 디도니 꺼내세기남 돌디샤 나 꺼내세기나 딱 샤기꺼 넌둔 피쩌니 묘트쿠거 건바 살딘데 건바 욕화리 다 라칸지나 다르 소리 멍아 뜨거 딱 이나 간다든 그동나 데라 데랑나 가거 아 따우치 쳇드레지 난다니 가르트꺼 라칸베꾸누테 다 뭐라고 석고르테인지나 중간나 살레세리 멍아오나 대도꾸데인지나 욕받으지 마라 디도나 건바 라칸이 살딘이누 그런 거 왜 말고 자취한테는 다 다나 꺼내서 지나 너니 알아띠다 나가 이거 한거 사우디 말 거라 니나나 지나 히톱 시톱 돈 부지 않는 거라 그놈 건들 지도 맥 대도나 꺼내는다 고자 꺼놈 성마 꺼내 지나 땅 갖다 지나 살던데 건바 살던 게 안 그래 뜻해 주 말하는 거 다 시끌라카니 시아주 그 돈이 시카도 꺼인 아니 이거 돈이 지나 샤누글라카니 스머득 카사고 포파요 무마젠 거 인무 쇼르치스 강한테 사우디 마시다라 카르승고 어떡거니 대랑 사우디 마시라 대랑고 어떡 나와인 카드기 리라르 정샤고 누가도까 카르승 손나라트 무드리 대랑 손나라트 무드리 오르케인지나 오르케 리라르 모샤고 누고 카도까 나르트 무드리 시 카사고 머떡 다롱 도충 모망아르 디도나 하네지나 쳇크샤 조지다 카마사고 머머떡 진 덤나라 샤프르 쟁게인지나 카톡 제토고는다카니 시지마르 다도고도 인지나 다 신체도 라카니 아니가도 관나 서타레 주가도가 소위 팀존이 지나다 농튼 펀슴 속에서 건 다시 전 누가리 적고급 샤누 라카니 농튼 펀슴 속 카르즈 샤누 농니 농튼 펀슴 속 있는 문제라 샤파가 농나 우라고 샤파가 농나 돈이 멈춘 일 가샤 샤리오 뜨끈 거 라카니 나를 그렇다시 그 라카니 오케트지 지나 다 우라고 그렇게 접찬디 라카니 다 Sengke karmunga erukke nangni chibtokilung kandani. Rjartika maruga tkilega nangni chibtokilung kandani. Ayamdika nguyambu siyaga nangni chibtokilung kandani. Domnika nguyambu nyankanira chibtokilung kandani. Namu shati tasu, uchu uranda injina ta hachari injina sukzizni nadali. Ngurta jina urata tamuyi mara. Uranda konezi naam, ruku uranda kase konunda, nornaka kusizni gari. Nantun satang jimamtana, tigadikichi ayamdika mandurchika, rananga, Karsan ka shabji ka hanshi ni jina, teren ka ta shabba ni nani jina, chik manan ka sadhu nung laka ni, nantun ka laka ni sikid ki, teren ka nukka nantun pansam sukwa rezi mu. Karsan ka tita na, nga rana nga, ta sen damu doka, nda tunu nga matang tenba ka go ni jina, shabba ina chukka, tamkha ina chukka, kong ina, chali maabgawa, tunu yopadu, tibjur salam tenbaadu, kwe tunu ngom sungwaadu. Dodo kondo shachu lakani, ta kaga chega zinu, ta jingtirin jina, ranga shanu lakani, mandik saranda muna, ta chenamba go, zorgum vego zinu, ta tamanda shachime ya.
2: Rin, dazik, tamkin jokbo namba, tahta talam kana, ngasu tahtung laksan zin namazimbi, tatulanji, kana terang ngatu ga, jima ga, tamsin dandirka, stangstu ta tsunu ga, dansik payong ga, jingti topkirn dajik dhugjuye, dansik angstak tango, Tsonam ni yung nuga pomo roma gan jingti topkir argatang chang chung udenga tigri. Dansik angstag nipa tolo ga pomo roma gan jingti topkir argatang chang chung udendan xigri. Dansik angstag samba tamso chikan jingti topkir argatang chang chung udendig vjeri. Dansik angstag jiwa tetan roma gan jingti topkir argatang chang chung uden xig chigri. Dansik angstag ngawa kavzang chikan jingti topkir argatang chang chung Wadan tiga ganyiri. Dansiga angstaga tiga pa pagamu tharkin jigimti tofkir argatanga tanga chung wadan ziya tiga rin.
3: Aray, chin jigimti ashtangstu ta tsepin dansiga pa xambu indi na angstaga tongu tonab ka pagamu zhulma. Angstaga niwa tsolhu ka pagamu zhulma. Angstaga samba tonab ka ramzu hikil jira. Dina shuni dansiga angstaga tongu mu gartag tanga dandang yila.
4: Dersiga sandam girgin namba tang dansiga marama tamu walhan jing kamzang. Dasang ichi chakkan yanam tu, jabsi la siyayang arang kura zayna zi gaf shabba zi kan chokpan bila tsangmi tingdun dang tsambar mun.
5: Yaaa, ta terang go nye ma zang ur, kar ma zang ur, jashiwi nye ma, tundrapi nye ma, pansum zogbi kar ma, delang jang hiti tsu, nye yag kar zang go nye ma, lo yag dib zang go nye ma, jashi kan zum go nye ma ndala. Ee agu chima yang chima sang go ma shan nam, bache zaga zaga naga song zaga nang ni ma nil zaya song zaga zaga zache si ma nye zaga zaga zache si ma nda. Ekani china ya ra trozga, shamni china nda ra trozga, warni za cha tangmo nda cha go ni sika. Ya, tarzagir zachisi mandok sertum nanga jisib dangi xerzo nanga kixib digi xertang chamur kerag changi wumun pangdu ciga dangi kapa yangchor tanga abzhagi. Kipa dorje dana kadi kama koko yara dangi chama tiga dama dangi damar dangi chima yona. Ercikka dachim chabji nana sagar samzum tapka yoka sagar samzum tapka tangan kwarzan karmo shuktiga yoka kwarzan karmo shuktiga nanga zachisi ma chendalga nisika. Ya, tak cuma mengmanyong susum dini sikit, cik nyata ziyi tumsum dini sikit, cuma mengmanyong lihsum dini sikit, cik nyata ziyi persum dini sikit. Ia cenderung jongkong mesil, mau cenderung jongkong syacinan dan baca jangan ini ini sikit, sebni cikak sonja ini sikit, son kerja kerja mau ini sikit, ini cikak sonja ini sikit, son kerja kerja mau ini sikit. Indah sedah seman diri yang ini sikit, ayat dah seman ciri yang ini sikit, tuh dah seman mandi yang ini sikit, gendah seman nyuri yang ini sikit. Ia kerjusin nangga pati yang nisik, cakup siri nafza yang nisik, cakala mari kira yang nisik, cara wajangi tondi yang nisik. Ya, tak cantai rengkong mesin, mau cantai rengkong saja nak, kencuri rengkong jadi nisik, tando aja rancak cikusin nisik, kontarong contum tugasin nisik. Ya, tamasum kencuri rengkong jadi nisik, ndro tuma aja rancak cikusin nisik, mandazum rendang cenara kontarong contum magasin nisik. Ewa takkan sugi rengkong jani sika, dikse mu jara cakcik shani sika, wendazo lingdang che nara kongtarong chongtsa maga zini sika. Ya, tangar chika lachim chubji nangga ngi sakal tapka chandok chikta na niyar jilta u kaku yini sika, marjin wangma tsundiga yini sika. Kukong mera ganchi yini sika, kora wanmandab jini yini sika, kongki tondiga sharsa yini sika. Etap kurmu nirchi zo rambar yini sika. Ya, tanim bertam bertazina sikka, lakang sikna bar nisikka, onga yang tunggu nambar nisikka, rima nak contoh nambar nisikka. Endi nim bertam bertaziri, na nyeran rida cakcak izg, tawa doktun cincik izg, nyerce lomar caca izg. Eja kuta kuta ziri, na cakla bertun cincik izg, cakla dager sisi izg, cakla kaya yang si yang izg, cakla sokje kena cakzg. Ya, tangan kiri nang kekaru cincik dek makanan kordo sepi, cakla wanman dapat nana oja karu kanam jamur seru. Eka Korea usm korna cici po yermo jingra ini sikka ser Korea usm tona gamarun kongin zunra ini sikka. Eka dagsim jun sami doja jirakan zol.
2: Le suni dansik angstuk tongon deh dansik kesandam gergi nambah usinuga karma cikta juye. Argotong tangacung argasm ksm. Argotong tangacung argani irnga. Argotong tangacung argabjil arga. Argotong tangacung argasm arga. Argotong tangacung argarga ksmri. Di nangni cium tuis katang. Argotong tangacung argarga ksmra. Cik ramai katang, gatang tangan cung argani ringa orang jiga. Jigim ti topker, argatang tangan cung arganga abjere. Re, suni kartu juli indah dera jigimkan, dasik angkut ani pare.
6: Ya, tangan dasik setuju patang ayana, argirgan nambah tamu nambah cenam biskan kemzang. Ngai nan thundun jaku kan dasik pat hamtu sijin. Ngai siapa na yang dua tahu ngam dua tiga tizi, ustim jig terang istam sukul siapa sih cakiko? Ya. Tam chula amma hum chula amma hum yin chokshigin chodar gunga chor gunga argun gungun gura chu yin chokshigin choda sakshin chosa tomo aman dabgilin chor yin chokshigin choda hanam chu hana chakka yinin chu yin chokshigin choda manam chu mana chakka yunin chu yin chokshigin choda shangda chu shangda la bursginin chu yin chokshigin choda rangdan chu rangda khwardun thamun chu sergi chanzgiri la Ya, tadi jenisnya saya nama cakap suka kenal juga pisang di cakap tiap-tiap nama cakap pisang cuma cakap nolam bayang tengah cakap semua ni nama ani kumar yang muncul. Yang apa yang lakukan sih moni ngasih nama ani kecik cakap ngan dalam orang kunci cakap ngan yang zargim tumbuh cakap. Yang arga orang zambu orang gelang kasih wanita sekarang lingko ngasih nama ani doktor ngan sama sahaja pakai. Yang sandal ngan sabda ngan ibu ngan kadi orang tanya rasin juga sirka. Ya, tak cundan dah masuk hantu juga ni. Ulu kawat jangka, tak cukur gopun di stopan dor di segi zoe jina. Yang di stangku, yang pun nora ini sirgam. Cikca kerja tergil ini sirgam. Nani ergokam tinggal ini sirgam. Hamba merenang cie ini sirgam. Yang di ergokam sotun si mo ini sirgam. Di ergokam kawu kater ini sirgam. Ergokam azin cinta ini sirgam. Yang di topan merdung orang sil ini sirgam. Dongwa jantin kawat ini sirgam. Yang bermandu kapal ini sirgam. Yang dia nak untung kerja yang kiri ini serga, yang kaca terusin dah ini serga, maka cerdun tang dah ini serga, si maru zong lomren cinta ini serga. Ya, tadi sekitar nak perundang ini serga, dia tungkar gue sang cergo ini serga, lapak ngerukaru ini serga, cembar zarur mukoy ini serga. 也就多啊，甚至切入一年些个，这个个看很大一年些个，个是个真那个特级个一年些个，俺们都特级些一年些个。也等看嘛，谁让我们一年些个，也嘛做用长青的一年些个。呀，当地土坡土那些什么一年些个，今年啊，也是我们不些一年些个，像我们这个上个人一年些个。也点我们也云南这个一年些个，我这个年代可不是一年些个，就那么是我这把一年些个，等唱歌也云南这个一年些个。
7: 人家唱起河湾的口音呢，些个我们把是我这把音呢，些个。人家通过东南西这个音呢，些个，爹娘啊，干么说这个音呢，些个，声音其实跟谁不同音呢，些个，爹娘啊，哪里差不同些呢，些个。哎，我说你们讲个这把做音呢，些个。呀，当地些个从东北搬去音呢，些个，刚四十个，这些看的音呢，些个，一个里差一个，这样偏的呢。人家我们这个是这个音呢，些个，哈口里家中那个偏的呢，怎么样这个是这个音呢，些个，七七不搭个就的呢，娘些嘛这个是这个音呢，些个。
6: 也唱起不多个小弟，那些学徒自然难得一年些个。呀，但都是我的看法，整个他是大一年些个，我看的整个小弟一年些个。也当都是上个那么的看的，你基本不是一年些个，弄到大个就一年些个，说那么我们全是一年些个。呀，但你当初个不的，都把这一弄出你看人个这些什么呀？但是咱这个人什么都是大个，跟个大家看不个这些，红的咱这人没个那个，跟个那当看不个这些。
3: 哎，这啥生活？谁都得跟个这看不个这，谁个这，谁都不是做不可事个。
8: 这对呢，人心二等个，你要么个干正个，其他就一来。二个当当冲，二个什么不是？二个当当冲，二个人啊，二个当当冲，二个个这个，二个当当冲，二个个这个。你那个前头一个干正，二个当当冲，二个个这个啦，前个嘛一个干正，二个当当冲，二个什么不是？弄的的。
6: 今天多不个二个当当冲，二个这个人啊的，也对呢。去年真是二等个三百步，该得当个点的也来。再看我满中是么十八等个哈菜，十八个米等米我记当会站的个不等米等，得这个我吃南八等，先等个二个南八。说说说你同辈跟着南八，接着从嘛的没有呢？俺能从头看到工货中真的一村的同辈，大同跟咱是个下半步破木专卖人。 大同的下边开不出人呐，我的开挖整个人吃，吃了人弄成个多吃，买点的多把这个鸡翅给我，上面特当天不是闷。呀，大地人个尼玛种，我干嘛种，这黑边尼玛蹲着边尼玛，也分什么左边尼玛，带了分中边尼玛，地个南边地那干嘛一个尼玛，啥啦地那地出了一个尼玛，完了地那一个一个尼玛，也有什么一个尼玛，几个啥人的干中的啦？
7: 也给我的开挖整个电车，买座土瓦米多吃点了，那整个电干的做多半都地站这个一些干。呀，当开挖那个些金丹那干巴那个个金丹呐，也跟开挖一个地方都做啥子，只能做面那吃了我的开挖整个我就不记得你的钱币嘛用。也用钱木空啥，几个都吃住印尼这里些干。呀。 当开挖那个些金丹呐，买座土子个地等那路啊什么种啊呀啦不的，也地这个什么着急的，得给一个那家土路个特产西瓜泥菜个，冬瓜木节那冬瓜泥菜个，现在这个啦，点着的村这个泥菜个，看里龙大大这个泥菜个，看几行藤子几这个泥菜里些个，呀，当地这个东这个东产嘛，泥菜个，咱家这个一个点着的泥菜个，地树东东个了一起的泥菜个。
6: 也去上街当班，打这个印尼三个的，激动扎西，打这个印尼三个，激动的勇哥，点这个印尼三个。眼睛他那拿着，吃不的有印尼三个，买这个产品做勇哥，点这个印尼这里三个。呀，当地多嘛，当村那个印尼三个，我那儿就是这个点这个印尼三个的，你莫咋那个买入印尼三个，也东么了，我把村个点吃印尼三个的，肯过当村的这个印尼三个，都咋这个勇哥点这个印尼三个。
7: 眼底里他们吃的啥么？眼底里看，他这个动作是个点着的眼底里啥个？呀，当地看他们可能那过眼底里啥个？咱那过没这个点着的眼底啥个？眼底那么几个的马路眼底啥个？咱马路没等村这个眼底啥个？眼底通这个啦哇？甚至没眼底啥个？结果就是不村这个眼底啥个？呀，当眼这个头我看哇，整个眼睛嘛，做土瓦面多吃。
6: 人家那弄整个人干的做菜的，没别扎起苦，娘家没别扎起苦。人家工地工的拍个扎起苦，用的用当多个扎起苦。人家到那看里给个扎起苦的到那上蹲着个扎起苦，扎起带了个喷什么臭不的苦。
2: 人家这个大木炭机。 Tarta Talum Kososona, Nasu Tartunga Sansin Nazimbi, Tuponaba, Tata Chichika, Sansin Nazimba and Diana, Shapaga Postami, Wotia, Tamhe Dasin Dander, Kavu Dembaga, Stimi Shapan Janamga Yilinin, Re Sunin Derzik, Sandam Girginambaga, Terangan, Dansig, Arthur Samba Divsinuga, Karma Chitaji, Argotan Tamachung or Gersumani.